अस्सलाम वालेकुम सामने सदाए तुर्किया से मुखातिब है आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 अगस्त प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर की 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने आप नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज़ के अलावा क्षेत्रीय ईस्ट और वेस्ट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलेवार प्रोग्राम हाथ देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेज़बान हैं इमरान ओपक।

मजबूत बनाने के मकसद के तहत तय पाया है। उसमें कहा गया है कि अगर तीनों में से किसी एक मुल्क के खिलाफ कोई मुसल हमला किया जाता है तो उसे तमाम ममालक के खिलाफ हमला तस्वर किया जाएगा। इस्लामी तावन तंजीम ने जुम्मे को सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्का मुश्तरक दफाई माहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। तंजीम के एक बयान में कहा गया है कि OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस माहदे के लिए अपनी कौवी कदरदानी हमायत का इजहार किया। से तीनों ममालक के इलाकई बैन अल-अक़वामी तावन को मजबूत करने के अज़्म की अक्कासी करते हुए एक अहम स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया है। ताहा ने कहा यह मुआहदा इलाके और मुस्लिम दुनिया में सलामती इस्तेहकाम की हमायत के लिए एक बुनियादी स्तून है। उन्होंने मजीद कहा बढ़ते हुए सलामती के चैलेंजेस को हल करने और OIC रुकन मुल्क के दरमियान यकजहती तामीरी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरक अज़्म की अक्कासी करता है। OIC के सरबराह ने तीनों मुल्क की इन कोशों क़यादत की भी तारीफ की जो बिलाखिर इस तारीख मुआहदे के दस्तखत पर मुंतज हुई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मुआहदा खित्ते OIC बैन अल-अक़वामी बरादरी में अमन खुशहाली के हसूल मुआमिन साबित होगा। जुमे को मक्का में मुनक़िद सैफरी की सरप्राइज इजलास में तुर्किया सऊदी अरब पाकिस्तान ने मुश्तरक दिफाई मुआहदा तय किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कीन ने निजी तौर पर ट्रंप जामे के सीनियर अहदेदारों से ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की शिद्दत को कम करने का कोई रास्ता तलाश करने की दरख्वास्त की है क्योंकि दस्तयाब अस्करी इख्तियार महदूद नतज दे सकते हैं वसी तर जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकते हैं। रिपोर्ट में मुसाकरा से आगाह तीन जराए के हवाले से बताया गया है कि कीन ने CIA डायरेक्टर जॉन रेड कल्फ स्टेट सेक्रेटरी मार्को रोबियो नायब सदर JT विंस को अपनी तशवीश से आगाही कराई। रिपोर्ट के मुताबिक कीन और दीगर अहदेदार समझते हैं कि सिर्फ फजाई क़ुव्वतों के जरिए तेहरान को अमरीकी मुतालबा कबूल कराने का इम्कान मादूम है। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी बड़ी मुदाखलत से गुरेज करने को तरजीह दे रहे हैं। बताया गया है कि कीन और दीगर सीनियर अहदेदार जुलाई के आखिर में तजवीज़करदा तसईद के हक में शक को शुबात रखते थे। जज्बी तौर पर इस खदशे की बिना पर कि ईरान अमरीकी इंतहादी इलाके तवने के बुनियादी ढांचे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बिलाखिर इस ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया जब खलीजी शराकत दल मुमकिन हमलों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट ने अमरीकी हथियारों के जहर में कमी के बढ़ते हुए खदशात की भी निशानदेही की जिनमें फजाई दिफा के इंटरसेप्टर्स दीगर दुरुस्त निशानाबाज जंगी साजो सामान शामिल हैं। यह वॉशिंगटन की तवील मुद्दत जंगी सलाहियत को महदूद कर सकते हैं। CNN ने कहा कि कीन ने ट्रंप को फौजी खतरात के बारे में मुतनबे किया है और साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि अगर हुक्म दिया गया तो अमरीकी फौज ईरान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी के अहदेदार अब ऐसे नतीजे की तलाश में जिसे ट्रंप बतौर सियासी कामयाबी पेश कर सकें और साथ ही सफारकारी के लिए गुंजाइश बाकी रहे जिनमें मुमकिन तौर पर हुरमुस को दोबारा खोलने का मुआहदा भी शामिल है। एक इलाकई फौजी एहलकार ने हफ्ते को कहा है कि रूसी हमलों ने यूक्रेन के दारकूमत के शमाल मशरक में वाक़ एक जिला में एक बच्चे समेत तीन अफराद को हलाक कर दिया है। कीव ने शमाल से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इंतबाह भी जारी किया है। मास्को ने हालिया महीनों में यूक्रेन की दारकूमत पर हमलों में खातिर खा इजाफा कर दिया। आमतौर पर वो मुख्तसर हमलों में रोकना मुश्किल होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की कसी फायरिंग करता है। इलाके फुंजामे के सरपरा तिमोर तेकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा है कि कीव के शमाल मशरक में वाकया बर्वारी जिला में हमलों में तीन अफराद बशमोल एक बच्चा हलाक तीन जख्मी हो गए। उन्होंने कहा हमलों के नतीजे में गिरने वाले टुकड़ों ने घरों और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और एक गैर रहायशी इमारत में आग भड़क गई। यूक्रेन की रियासती हंगामी सर्विस ने शोलों में ढकी एक तबाहशुदा इमारत की तस्वीरें शेयर की और बताया कि गौन पोखयाका में हमले ने एक दो मंजिला मकान और दो गाड़ियां तबाह कर दी। गोदाम में आग भड़क उठी। AFP के एक रिपोर्टर ने दारकूमत में दर्जनों धमाके की आवाजें सुनी जब यूक्रेनी फजाई ने शमाल से बैलिस्टिक हथियारों के खतरे की वार्निंग जारी की थी। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। यूक्रेन के रहनुमा ज़ेलेंस्की सर्बिया का एक तारीखी दौरा कर रहे हैं। लुबनानी सदर जोसेफ ओर्निका सदी तनाजात कैदियों के तबादले के हवाले से रूम इसराइल के साथ रात मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में जंगबंदी मकानात मसमारी में जब सब पायलट एरियाज पर भी बात हुई। ओर्निका अमरीका

आया मिसाइल ख्याल के लिए अपने कौशन जारी रखेगा। ये मुजाकरात जून में फ्रेमवर्क माहदे की पैरवी करते हैं जिसमें इसराइल फौज के हमर हलावार इनखला खाली करदा इलाकों में लुबनानी फौज की तैनाती का तस्वर पेश किया गया था। सदों कैदियों पर इसराइल के साथ मुजाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुजाकरा जून में एक फ्रेमवर्क माहदे की पैरवी करते हैं जिसमें इसराइल फौज के इनखला खाली किए गए इलाकों में लुबनानी फौज की तैनाती का तस्वर पेश किया गया था। अमरीका ने कोलंबिया को $1 बिलियन की इमदाद भेजने के इरादे का ऐलान किया है। ट्रंप इंजामी टैम पाजू के सदे बेला रोड्री लास पेरेला के इफ्ताह के बाद कोलंबिया को $1 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद फ्राहम करने के मनसूबे का ऐलान किया। वाशिंगटन ने कहा यह पैकेज कोलंबिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को तकवीत देगा, फौजी तावन को गहराई देगा। रिला स्प्रेला, जिसे द टाइगर का लकब दिया जाता है, ने नशावर दहशतगर्दी को मुसलसल शिकस्त देने का अजम किया और कहा कि मुसलह ग्रोहों के साथ बातचीत का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जापान के क्यूडो न्यूज ने हफ्ते को रिपोर्ट किया है जापानी वजारत दफा ने माली साल 2027 के लिए रिकॉर्ड $56 बिलियन की दफाई खराजात की दरख्वास्त करने का मंसूबा तैयार किया है क्योंकि टोक्यो इलाके सिक्योरिटी खदशात के दरमियान अपनी असली तैयारी में वसत ला रहा है। यह बजट की दरख्वास्त अगस्त के आखिर तक फाइनेंस वजारत को जमा कराई जाएगी और साल के आखिर में होने वाली बातचीत के दौरान यह रकम मजीद बढ़ सकती है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने कहा मजमू दफाई अखराजात बिल आखिर तकरीबन $63 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। बजट जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को इन चीजों के लिए तैयार करने पर तवज्जो देगा जिन्हें हुकाम नई नोयत का जंगी तर्ज कहते हैं, जिनमें ड्रोन्स मसनू जहन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल शामिल है। जापान इंटरसेप्टर ड्रोन मसनू जहन से मदद याफ्ता कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तवील फारसे तक मार करने वाले मिजाइल खुफिया डेटा के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई पावर लेजर माइक्रोवेव हथियारों में सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ये मनसूबाबंद अखराज जापान के 5 साला दफाई मजबूती प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके तहत माली साल 2023-2027 के लिए $270 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। टोक्यो ने 2022 में नई कौमी सलामती हमतमी अपनाने के बाद से दिफाई खराजात में मुसलसल इजाफा किया है और चीन, शुमाली कोरिया, रूस से होने वाले सिक्योरिटी खतरात को इसकी वजह करार दिया गया है। तजिया करों का ख्याल है जापान की बढ़ती हुई दिफाई सलाहितें मशरकी एशिया में असलाह दौड़ में इजाफे का बायस बन सकती हैं जबकि चीन टोक्यो की अस्करी तरक्की पर नुकताचीनी की है। इसके साथ ही तुर्की से खबरें खत्म हुई।

आपका मोबाइल फोन, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, चक्कर काटने वाले विंड टर्बाइन्स, इन सब के मुश्तरक इजाद नायाब जमीनी अनासर हैं। तुर्किया इस मैदान में वर्ल्ड लीग में शामिल है, तो इस हवाले से हमारी इस्तेदाद क्या है? हाई टेक्नोलॉजी की नायाब जरूरियात, तो आइए शुरू करते हैं। सामिन, आज हम जदीद टेक्नोलॉजी के नागजीर अज्जा या नायाब जमीन अनासर के बारे में बात करेंगे। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, विंड टर्बाइन से लेकर दिफाई सनत तक के मुतद शोबों में इस्तेमाल होने वाली अनासर असराजे की टेक्नोलॉजी की बुनियादी जरूरियात में शामिल है। ताकतवर मकनतीस बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली अनासर आम सतह पर खास तौर पर ग्रीन एनर्जी के रुझान, डिजिटलाइजेशन के उरूज के साथ आम सतह पर कहीं ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हाल तुर्किया के मालिक होने सलाहित को भी उजागर करती है। दरहकीकत वजीर पर तवानाई कुदरती वसायल अल अरसलान बायरख्तार का बयान कि हम नायाब जमीन अनासर के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 5 ममालिक में शामिल होंगे, ये इस मैदान के अहताफ का मजर है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी चरापाशा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में शुबा माइनिंग इंजीनियरिंग की सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर इल्गिन कुर्शुन नायाब जमीनी अनासर में तुर्किया के वसायल के बारे में TRT खबर चैनल को आगाही कराई है। यह नायाब इस्तलाह वो नहीं है जो आपके जहन में है।